बोलोंजे प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज।

0: तक होवे जोर महला पहला।
1: नरमनी पत्नी जैसा लाही सतसू दर गए अंदर पाई है, तक ना टूट सपूत महला।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चहन अर वरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तो जो कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गण जाय त्रिपवन महीप सुर नार असुर नेत नेत बाण तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बिखे

गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना, जिने नाम ते आया गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जपन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर खुला तेरे घर नंद बधाई तुझ घर

आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा दिखावे तहां तहां रखे आए आयत। बेग बेग फतहे बिरग की पैर पंथ की जीत। श्री

आदि पुरुष अपरंपर कर्ता जी तुद जीवाडे अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पई ले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी आले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही भी सरिया आसा महला पंजवा पई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरै कितै नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जाप।

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा।

मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरिन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरन काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि।

दुष्ट अरिष्ट टरय तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं।

आस गोबिंद दास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया। राग रतन परवार परिया शबद गावण आईया। शबदों ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै। घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया।

कहै नानक सुनहो संतहो शबद तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शबद तित कर सभागै कर सभागै शबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनद।

नाम जपी नामो सुखसार नाम जप हो मेरे साजन सैना नाम बिना मैं अवर न कोई वड़े भाग गुरमुख हर लैना नाम बिना नहीं जीविया जाए वड़े भाग गुरमुख हर पाए नामहीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया गुर का शब्द रखवारी चौकी चौगिर्द हमारी राम नाम मन लगा

आता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेव न बिरथी जासी आनंद करह तेरे दासा जप पूरन होई आसा गुरमुख मार्ग आखिया गुरमत हितकारी हुकम रजाई चलना गुर शब्द विचारी पाणा पावै खसम का निहचौ निरंकारी इसक मुसक महकार है हुए पर उपकारी सिदक सबूरी साबते मस्ती हुशियारी गुरमुखे आप गवाया

0: मुखे उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Ah, hey!

बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है। बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान परमन है। कौतक कोड तमाशया चित्त नय

सिर लगा जम डांड, तो पशुताने बिन पूरे गुरुदेव फिर सैतान्या। सिर लगा जम डांड, तो पशुतान्या।

से कथ कथा तिन जानी जो को आए सोई बिहज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की

प्रभु नानक दे कर हथ समरथ गुरु सिर हथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस्बा सरेक

व्यापार तीर्थ नाभे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतियामन संतोख उपजय देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बाबेकार इक होंदा खाए चलया थाऊ तिना पे काई कार जल थल जिया पुरिया लवाया कराया कार ओए जे आख

थोड़ी सेव की थी संतोखी नि सचो सच त्याया उनी मंदे पैर न रखियो कर सुखरी धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुइना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई न।

शतर न पतर न चौर न चावर, बैती जात रिसे ना बिचारो, रथ न असन गज सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृत्र साजन साख, उल्ट दे जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत।

0: मान दानमक जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मिथुत पाई ताहू ते लै रखे निरारे कामन पावन पूरक मावन ए विद करत औ तंजारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल विदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहुविध जोन परमेओ अत पारी खिन पचसा नामनी सिमरु दीना नाथ पान पसारी खान पार मीठस भोजन अंत की बार ओत कत खारी नानक संत चरण समुद्रे और माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोज ते गोरख तरन गगन आवत फुंतावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदा।

एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन।

0: अंत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनोर पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर ना उच्चारी। इशनान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंद्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग। नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह शुदे हर नाम खग।
0: उद्यम कर लागे बहु पाती बिचरै अनिचक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ ब्रो पंते सुखम दे बंदे बहु जटुआ। बिन हार भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के अटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाटे कर थटुआ।
3: सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद तारं गोरे अर्जुन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो। भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु परकास्यो हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग।

गरब गहलड़ो मूड़ड़ो ही हो रे ही हो महाराज रे मायो डीहर ने आई मोह फाके हो रे रहाओ कणो कणो कणो साद लोड़ा।

थारे सगले प्राचत मिट्यो रे, जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जान नानक गर्वास ना पाउड़े ओरे।

जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जान नानक गर्भास ना पौड़ो रे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा, गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे, हियो महराज री मायो, डीहर ने आई मोहे फाके।